FM बैंडिंग 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज बुधवार है, शक समत 1948 के भाद्रपद मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देश में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया।

0: रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आज के चिंतन का विषय है नॉर्मल।

0: निर्मल यानी पाक साफ स्वच्छ। बच्चे भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, तभी तो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। बच्चों का यही सच्चापन कोरापन मन की निर्मलता कहलाती है। छल कपट द्वेष ईर्ष्या अहंकार इन सबसे रहित मन निर्मल होता है, बिल्कुल ईश्वर तुल्य। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार की आपाधापी में संघर्ष शुरू होने लगता है, हमारे अंदर कामनाएं जागने लगती हैं, हम उनकी पूर्ति हेतु शीघ्र प्रयास करते हैं, चाहे उचित हो या अनुचित। यहीं से विकार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और ये विकार मानव समाज के भाईचारे को कई प्रकार से तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गंदगी हमें पसंद नहीं। हम घर को भी प्रातः साफ करते हैं तथा स्नान आदि कर स्वयं को भी, क्योंकि सफाई अंततो गत्वा सुंदरता में प्रकट होती है। इसी तरह जब मन की निर्मलता हमारे संस्कार में आती है, तब मानवीय रिश्तों के व्यवहार संस्कार में सौंदर्य को प्रकट करती है। अतः मन की निर्मलता हेतु हमें हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। कोई दुर्गुण मन में प्रवेश करे, इससे पूर्व ही हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हम अपने मन को एक बालक की तरह निर्मल बना सकते हैं। हमें अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए जो हमारी कमियों को बता हमें सचेत करता रहे। तभी तो कहा जाता है निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। प्रशंसा की भूख प्राय सभी में होती है, प्रशंसा कब चापलूसी में बदल जाए पता नहीं चलता। इस प्रकार की व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द होंगे तो हमारे मन की निर्मलता कब कलुषता में बदल जाए पता नहीं चलेगा। अपने आलोचकों को प्यार से संग रखना आवश्यक है। निर्मल हृदय वाले अपने आसपास के दीन दुखी जनों को सहयोगी बनाकर चलते हैं। संसार में सच्चे मन निर्मल हृदय के व्यक्ति ही संस्कार संस्कृति के पीढ़ी दर पीढ़ी भागीदार होते हैं। हमारे हृदय को निर्मल रखने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। ईश्वर का स्मरण हर दिन को शुभ और मंगलमय बना देता है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

प्रातः 6:50 पर समय होगा आदिवासी लोक संगीत का। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे जीवा भाई व साथी कलाकारों के आवास में गाए कुछ लोक भजन।

कार्यक्रम वातायन का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:20 पर। दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनेंगे ठीक सुबह 8:15 पर।

राजस्थानी लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 8:45 पर और सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:10 पर और सुबह 11:00।

मैं देखें तो इसी प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और रात्रि 10:00 से 11:00 तक। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवा वाणी का प्रसारण समय रहेगा ठीक 5:05 पर।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम 91.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किसान श्रोताओं का कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती दी बात कार्यक्रम हम बरवावड़ा सब भाइयों ने वलजी भाई ने राम राम। देखो किसान भाइयों, खेती दी बात कार्यक्रम ने माध्यम से आज आप बात करी रहा हूं कि बकरी पालन आय नो एक अच्छो स्रोत कहवा है। किसान भाइयों, बकरी पालन आय नो एक महत्वपूर्ण ने बहुमुखी स्रोत है, क्योंकि आने थे कि दूध मांस खाल ने खाद जेवा उत्पाद भी मले हैं, जिन्हें बाजार में बिक्री करीने किसान अपनी आय भी वधावी शके हैं। दूध नो उपयोग पनीर ने मक्खन जेवा उत्पाद बनाबा में भी काम आवे है। बकरियों ना बच्चा भी बिक्री करीने नगदी प्राप्त करी लेवा है। आने अलावा बकरियों की खाल थकी चमड़ा उत्पाद भी बनावी शको ने इन्हें लीड थकी उत्कृष्ट खाद भी बने है, जे काफी महत्वपूर्ण कहवा है। किसान भाइयों, बकरी पालन थकी अन्य पशुपालन की तुलना में कम लागत लागे है ने आ छोटा किसान भी आसानी थकी काम करी शके। आ किसानों हरू साल भर आयना एक स्थिर स्रोत प्रदान करे हैं, जेने थकी इननी आजीविका भी सुरक्षित था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बकरी पालन महत्वपूर्ण योगदान आले है। किसान भाइयों, आ प्रत्यक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप थकी रोजगार ना अवसर भी प्रदान करे है। बकरियों की विभिन्न प्रजातिये आवे हैं, जे आपड़े क्षेत्र अनुसार काम आवे ई आप आसानी थकी राखी शको। बकरी ना गोबर ने लेडी भी कहे हैं, जे के खातना रूप में अधिक उपयोगी रहे। बकरिये सर्ती वेरा बंजर भूमि में अगर लेडी करीने आले तो इन्हें उपजाऊ बनाबानी क्षमता भी राखे हैं। बकरिये ने भविष्य ना पशु भी कहे हैं। बकरी ना उपोत्पादो थकी प्राप्त औषधीय ने जैव रसायन भी घना उपयोगी हैं। किसान भाइयों, देश में बकरियों ने दूध मांस ने अन्य उत्पाद हरू उपयोग में लावे हैं। आना में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होवाने कारण आननी उपयोगिता सिद्ध थई रही थकी है। किसान भाइयों,

0: बकरियों थकी देश की अर्थव्यवस्था में हुदार हारो काफी योगदान है। जिम के बकरियों थकी अपने एक तो दूध उत्पादन मल है ने आने थकी थावा वारा जे व्यंजन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इन्हें अलावा किसान भाइयों बकरी थकी प्राप्त जे मांस उत्पाद है ये भी अर्थव्यवस्था हुदारवा में काफी योगदान आल है। बकरियों थकी प्राप्त जे ऊन है ये भी अर्थव्यवस्था में हुदार तो आलीरू है ने इन्हें हाथे हाथे चमड़ा उत्पादन है ये भी खूब महत्वपूर्ण आपरो काम राखे है। ने खास करीने बात करो किसान भाइयों तो बकरी थकी खाद ने अन्य वस्तुएं जी भी प्राप्त थाए हैं ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी योगदान आलेरी है। तो किसान भाइयों आज आप बात करिए बकरी थकी अधिक आय लई सके किसान भाई आज खेती की बात कार्यक्रम नो टेम पूरो थई रह्यो तो वालजी भाई ने आज्ञा लो काले सोरा ऊपर फिरी नवी जानकारी नाते मलंगा ए आवजू राम राम राम राम।
1: अभी हमारे किसान श्रोता वालजी भाई से खेती की जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात के अंतर्गत। इसी के साथ ही कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जीवा भाई व साथी कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: इस लोक भजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है संस्कारी जानवर। इस कहानी को आप सुनेंगे नवीन कोठारी से।
1: संस्कारी जानवर। एक सर्कस हो वणी माए घना कलाकार लारे जानवर भी हा। सर्कस घणो विख्यात हो वणी रा कलाकार और जानवर पूरी तरह सुनिपुण हा। आपणा कणी काम माए चूकता नहीं हा। एक शहर माए अणि सर्कस ने चालता थका पूरा 4 महीना वे गया, पण अबार तई हाउसफुल चाल रहे हो। सर्कस वाला ने 2 महीना और टाइम बढ़ावनो पड़ियो। अबे सर्कस दूजा शहर में जा रियो हो, सगलो सामान बांध रियो हो और अगले दिन रवाना व्यवहारो टाइम हो। थोड़ा जानवर तो जो आपस में गहरा दोस्त था वना सीखाबाजी की थी। ये दोस्त था शेर, वांदरो, मिट्टू, हाथी और खरगोशो। ये 5 ही गहरा दोस्त था। सर्कस वाला अणा ने खावा पीवाने तो पूरा देता, पण अणारो मन वठे नहीं लागतो हो। ये खुला जंगल में स्वतंत्रता रो जीवन बिताणो छावता। अणा या सिखाबाजी की थी कि यदि आपानी गाड़ियां जंगल रे मैं गुजरेगा तो किस तरह भी बाढ़ने भाग जावांगा। भी परेशान हा कि आपाना पिंजरो खोलेगा कौन। घणो दिमाग लगाया बाद खरगोशो बोलियो, मारो एक बाल्डो दोस्त है ऊंदरो, जो भड़ेरा मैदान में बिल वणीने रेवे। वो मारा सू रोज राते मिलवा आवे, आज भी आवेगा, वो अपनी मदद कर सके। रात वेगी, ऊंदरो थोड़ी देर में आयो। वणी ने पतो तो हो कि वणीरो दोस्त खरगोशो काले चलो जावेगा। वो वणी रे वास्ते एक बढ़िया गुलाब रो फूल लारे लायो। 5 ही दोस्त तो वणी रीज वाट जोई रहा हा। खरगोशे सबासू ऊंदरा रो परिचय करायो और ऊंदरा ने वणारी मुसीबत रा बारा माए समझायो। ऊंदरे कियो, बस अतरी सी बात, मू मारा दोस्तारे वास्ते अत्रो आसान काम तो करी सकूं। सगला दोस्त अभी बेफिकर वही ने ऊंगवा लाग्या। जल्दीज पांचा ने घेरी नींद आई की। नींद माए सबा ने आजादी रा सपना आई रहा हा। कदी दन उग्यो कणा नहीं पतो नहीं चाल्यो। सर्कस रा कर्मचारियां रा खां खूं और खेखारारी आवाजासु वणा सबारी नींद टूटी। आज 5 ही दोस्त घना राजी हा के कदी ये गाड़ियां चाले और मां सगला आजादी री तरफ बढ़ा। वणा ने एक एक मिनट आज एक एक घंटा जीव लाग रियो हो। भी सगला बेसब्री सु रवाना व्यवहारी बाट जोई रहा हा। इंतजार रो टेम खत्म गयो, गाड़ियां चालवा लागी। 6 घंटा गाड़ियां चालने जंगल माए पहुंची। यदि भी घना जंगल माए पहुंची तो ऊंदरे मौको देखने वांदरा रो पिंजरो खोली दीदो। अबे खरगोश

ओशो ऊंदरा ने कियो, दोस्त अबे तू वापस परो जा। बांदरा रो पिंजरो थे खोली दीदो, यो माने वास्ते बहुत है, अबे तू मां सगला आजाद वे जावांगा। थारू माने ऊपरे यो एहसान रहेगा और मां अनि ने जीवन भर नहीं भूलूंगा। ऊंदरे सबों विदाई ली दी और जल्दी जल्दी जावा लाग्यो। पन वनी ने याद आयो के वनी रो एक दूर रो रिश्तेदार अठे पास में रहे, वो आज राते वनी रे अठे आराम करने काले घरे जावारी सोच ने वनी रिश्तेदार रे परोग्यो। बांदरो जिस तरह ही आजाद हुयो, वनी सगला दोस्तारा पिंजरा खोली दीदा। सगला जानवर एक लारे बांधने आ गया। पिंजरा सर्कस री गाड़िया रे सब सु पाछे बंधी तकी ही अनि वास्ते सर्कस रा मीनक जानवर ने बांधने निकलता तका नहीं देख सक्या। बांदरो छलांग लगाई ने रूखड़ा ऊपर चढ़ गयो। मिट्टू भी उड़ ने रूखड़ा पे बैठ गयो। खरगोशो हाथी री पीठ ऊपर जाई चढ़ियो। अबे शेर और हाथी जल्दी जल्दी सर्कस रे दूसरी दिशा आड़ी जावा लाग गया। एक जगह जाई ने मिट्टू बोलियो, दोस्ता यह जगह घनी अच्छी है, अठे जंगल रा दूजा जानवर जो आदता सु पूरा जंगली है आपणा सु दूरा रहेगा, बणा सु आपणे खतरो है, बणाने तो पतो भी नहीं चालेगा के आपाणी जंगल माए हां बीठेरिया जंगली और आपणे जंगली पणो आवे नी। सगला दोस्ता ने मिठुरी बात झट समझ में आईगी। जंगल रा थोड़ा सा हिस्सा में आप अपनी मर्जी माफिक जगह देखने भी रेवा लाग गया। सगला मिलने एक दूजारे खाना रो बंदोबस्त की दो और एक साथे भोजन की दो। शेर भी मांस नहीं खावतो हो, ये पांच ही जानवर गणा संस्कारी हा। सर्कस रा कठोर अनुशासन री वजह बनारो जीवन संस्कारी वे गयो हो। दो दिन ठीक रिया वेगा और तीसरे दिन आफत आएगी। जंगल रे राजा बब्बर शेर रो एक जासूस हो काण्यो कागलो। वणी जाई ने राजा ने शिकायत की दी के एक शेर हाथी बांदरो खरगोशो और मिट्ठू ये पांच ही अनि जंगल माए एक जगह ठेरिया थका है। आपारे वेता थका अनि जंगल माए दूजारी हिम्मत किस तरह वेगी, मने भी थोड़ा अटपटा भी लाग रहा है। जासूस कान्या कागलारी बात सुन जंगल रो राजा विचलित वे गयो। वणी ने आपानो सिंहासन डोलतो नजर आयो, वो दहाड़ लगाई ने उठ खड़ो गयो। वणी कागला ने आदेश दीदो, पांचा ने मारे सामने हाजिर करो, अगर भी कणी तरेस री आनाकानी करे तो जंगल रा खतरनाक जानवरा ने ले ने जाओ और वणा ऊपर हमलो करने अणि जंगल माए सु खदेड़ दो। कागलो राजा बब्बर शेर रो आदेश लेने पांच जानवरा पांग्यो और वणा ने सुनाई दीदो। पांच ही पहला तो घबराया पण विचार करने कागला ने क्यों, मां काले सुबह जंगल रा राजा रे सामने जरूर हाजिर वे जावांगा, माने काल तक रो टेम दे दो। अबे रात भर पांच ही सोया नी, सोचता रिया के काले माणी खेर नी, कई भी वो राजा रा मुंडा आगे तो जावनच पड़ेगा, जो वेगा सो वेगा देखांगा। सुबह रहेगी आज रो टेम घणो जल्दी जल्दी भाग रियो हो। पांच ही जानवर डरता थका बब्बर शेर पास जाई रिया हा। जंगल माए वनारा जो भी जाति भाई मलता अचरत सु वना ने देखता, क्योंकि भी वना सु साफ सुथरा हा और वनारी अदा अलग ही लाग रही ही, वी घना शिष्टाचार चार सु चाल रहा हा। वना राजा री गुफा तक जाई ने खबर भी जाई, राजा री इजाजत मिली और पांच ही घूमता तका राजा रे सामने हाजिर व्या। शेर सबसु आगे हो, वो बब्बर शेर रे सामने जाते ही आगे रा दो ही पग नीचे करने माथो जमीन पे रखने नमस्कार की दो। हाथी दो ही भारी भरकम टांगा ऊपरे उभो व्यो और नमस्कार की दो। बांदरे भी हाथ जोड़िया, खरगोशे नीचे बैठने नमस्कार की दो और मिट्ठू बोलियो, राम राम महाराज। जंगल रो राजा वणा ने देखने संतोष से सांस ली थी और नम्रता से पूछो, था पांची कौन हो और अठे कणी काम आया हो। सबरी आड़ी सु सर्कस रा शेर जवाब दीदो, मां पांची सर्कस सु भाग्या थका जानवर हां, आपरा जंगल माए शरण ले राखी है, माणा सु एक गलती रहेगी के मां आपरी बगैर इजाजत रे आपरा जंगल माए शरण ले गया।
माँ बचपन

0: सो सर्कस में मोटाव्या अणी वजह सू जंगल रा कानून कायदा सू वाकिफ नहीं हा माणा सू आप रा जंगल रा कणी जानवर ने कदी कणी तरह री कठिनाई नहीं वेगा अणी वातरो मा वचन देवा। अबे बब्बर शेर निश्चिंत वे गयो वणी वणा ने आदर सू बैठवाने कियो और खाना पीना री व्यवस्था की दी। पांच ही दोस्त रे अबे जान में जान आई। पहला तो भी सोच रहा हा आपा सर्कस में ठीक हा यार अठे आई ने और फंस गया पण अबे वणा ने पछतावो नहीं वे रहो हो। अत्रा माय पांच आरे खाणो आयो सगला रे तो ठीक पण शेर रे खाणा माय गड़बड़ ही वणी रो खाणो मांसाहारी हो। शेर राजा सु माफी मांगतो थको कियो महाराज मुं प्योर वेजिटेरियन हूं मैं बचपन सु अबार तक कदी मांस चाख्यो तक नहीं। जंगल रो राजा बब्बर शेर अबे आपनी हंसी नहीं रोक सक्यो वो राजी वेवतो तको बोलियो वाह मजो आई गयो आज पहली दफा कणी जानवर रा मुंडा सु अंग्रेजी सुनवाने मिल्यो। हाणी या वात घणी आछी लागी मां भी मांस छोड़वारी कोशिश करा क्योंकि या हिंसा है पण कई करा बाप दादा यो करता आया माने भी।
1: इस कहानी के साथ ही कार्यक्रम गातायन अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फकीरा फिल्म के गाने के साथ गीतकार और संगीतकार हैं रविन्द्र जैन।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए मुकेश और कंचन की आवाजों में धर्मात्मा फिल्म का गाना। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ।

देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूँ।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा दी

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और सपन चक्रवर्ती का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम जमीर।

0: हमारी अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दीवार फिल्म से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।
1: कह दूं तुम्हें हाँ। क्या चुप रहूं
2: ना

0: आज भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में चुपके चुपके इस फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आरना सबलिंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों

0: के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
5: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15% से 50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिवीजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।

0: मामले में शामिल तीन अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरगोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
2: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडल ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मॉनसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगराराजी की 6वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50%

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माँ ही चैनल पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हूँ आपकी दोस्त रेडियो होस्ट हीरा जैन, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, घर सिर्फ दो अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसमें पूरी की पूरी दुनिया समाई हुई होती है। घर वो जगह है जहाँ हम दुनिया से थक कर लौटते हैं और बिना कुछ कहे कोई हमारी थकान समझ लेता है। जहाँ माँ की आवाज होती है, पापा की चिंता होती है, भाई बहन की नोकझोंक होती है, बच्चों की खिलखिलाहट होती है और कभी कभी एक बिल्कुल शांत कमरा भी होता है जिसमें बैठकर हमें लगता है हाँ अब मैं अपने घर में हूँ। कितना अजीब है ना, हम जिंदगी भर एक खूबसूरत घर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में घर ईंटों सीमेंट और सामान से नहीं बनता। घर बनता है रिश्तों से, विश्वास से और अपनापन देने वाले लोगों से। तो आइए आज घर की इन्हीं खूबसूरत यादों और एहसासों की बात करते हैं कुछ दिल से में, और शुरुआत करते हैं घर परिवार की गर्माहट से जुड़े प्यारे से गीत के साथ। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, घर वो जगह है जहां इंसान सुकून से रहता है, वो जगह जहां आते ही सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है। यहां तक कि घर इतना सुकून देता है कि घर का रास्ता दिखते ही इंसान आराम महसूस करने लगता है, अपनापन महसूस करने लगता है, सुकून महसूस करने लगता है। कुछ ऐसी ही बात है घर की। तभी तो इंसान हर दुनिया में, पूरी दुनिया में इंसान बस घर के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि घर वो जगह होती है जहां इंसान सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, घर ऐसा हो जहां लौटने का मन करे, घर ऐसा हो जहां रुकने को मन करे, दरवाजा खोलते ही मिले अपनापन और दिल कहे यही तो मेरी दुनिया है।